जर जा रहे हैं। भैया मुनर ऐसे नो मेरा नाम मकसद नो मेरा नाम मकसद नवी लज्जकोर मेरा जुदन नो रोक बेटे दियोर I didn't know that I'd be your king.